सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी के चरण कमलों से नमस्कार। सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज श्री राग महला पहला का यह शब्द है। इस दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं कि ऐ स्त्री ऐ जीव स्त्री

तेरे ने ता मिलना है जे गुण होन वो तेरे गल चुके हैं। इस रीरा मेरे इस जग में कि क्या तुझ कर्म कमाया, तू कुछ भी नहीं कमाया, उस वाहिगुरु नालों दूर होके हर बिस्तर तेरे गुण गलिया, शरीर नू तू समझा ही नहीं, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन मंदर वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन दुर्लभता वाले, इस दे विच वो गुण ही नहीं हन सब तो उत्तम अते श्रेष्ठ होण वाले, इस दे विच गुण ही नहीं हन कि इसनू सरोवर आख्या जाए, सारे गुण तां गाल लए हन लोभ नाल, लालच नाल, हंकार नाल, क्रोध नाल, काम नाल, आदि चीजां दे नाल तैं सारे गुण गाल लए हन। काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा टाले, सारे गुण तैं गाल लए हन ते गुणा तो बिना तो फिर मिलदा ही नहीं है। कहंदे हन जे गुण होवंता फिर मिले, अपने दिल दी तख्ती उत्ते इसनू नोट कर लो, हिरदे उत्ते इसनू उकर लो, इसनू लिख लो कि अकाल पुरख वाहिगुरु दी भगती जो है, अकाल पुरख वाहिगुरु दी जो प्राप्ति है ओ गुणा दे उत्ते आधारित है, और ओ गुण जिन्हां दी कोई कीमत नहीं है तो बाजार विकदे नहीं हैं, तुसी खरीद नहीं सकते, अमुल गुण हन, अते अमुल गुणा दा तू व्यापार नहीं कीता, अवगुणा दा तू व्यापार करदी रही है, अवगुण तू सिखदी रही है, लेकिन ओ ते अमुल गुण हन, अमुल गुण, अमुल व्यापार, अमुल व्यापारीए, अमुल भंडार। कहंदे हन जे

अकाल पुरख वाहिगुरु पति दे मिलन तो बिना इस काया नू जो मर्जी सजा लो, श्रृंगार लो, सुंदर बना लो, कहते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। तो सब श्रृंगार विकार, सारे विकार, क्योंकि अंदर ले सारे गुण डल चुके हैं। आज भी सारी ह्यूमन सोसाइटी दी, एक कौम दी नहीं, सारी ह्यूमन सोसाइटी दी ए हालत है कि हरी वाहिगुरु तो विसरन दे नाल अंदर ले शुभ गुण गल चुके हैं, पर श्रृंगार दी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी ब्लूम कर रही है। फैब्रिक इंडस्ट्री हुई, डिजाइन इंडस्ट्री हुई, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हुई, ऐ तमाम किस्म दी जो इंडस्ट्रियां हैं, वाई दे आर फ्लरिशिंग सो मच, बिकॉज साडे अंदरले गुण उते रॉटन हो चुके हैं, उते गल चुके हैं। नाउ टू हाइड दैम, उन्हां नू लुकोण लई असी अपने आप नू बाहरों सुंदर दिसण दी कोशिश करदे हां। पर कितने भी असी सुंदर होइए, जदों ही असी कौड़ा बोलांगे तो अंदरली असलियत ने जाहिर हो जाना है। जदों असी हंकार करांगे उदों अंदरली जो ओह गलियापन है उसने जाहिर हो जाना है। जदों असी रूढ़ होवांगे उदों उस अंदरले गलेपन ने जाहिर हो जाना है। तो कित्थे छिपावांगे बाहरली खूबसूरती दे नाल अंदरली कुरूपता नूं। जे अंदर क्रूप है, फिल्थी है, अगली है, तो बाहरले श्रृंगार ने उसनू टक नहीं सकना। अते जितनी देर तक अंदर फिल्थी है, क्रूपता है, उतनी देर तक किसी ने प्यार भी नहीं करना, क्योंकि प्यार भी सुंदरता नू हुंदा है। अते सुंदरता गुणा दे विच हुंदी है, वस्तुआ दे विच नहीं हुंदी। गुरु बाबा जी बहुत डीप गल कर रहे हैं, कहते हैं तू पिरवाली नहीं, तेरे अंदर वो गुण नहीं हैं, फिर ते तो दूर है, ते तू श्रृंगार कर दी फिर दी है। आओ श्रृंगार दे मतलब होर सुनिए। गुरु बाबा जी कहते हैं उन्हां गुणा नू वापस लिया। बस अज दे साडे कीर्तन दी जो थीम है, जो विचार है, वो ए है कि साडे गुण गल चुके हैं, उन्हां गुणा नू वापस लियाओ। किवें लियाना है वो भी विचारांगे, और उन्हां गुणा नू लियाण तो बिना जो अगे दी जो भगती है, अकाल पुरख वाहिगुरू नू मिलन दे जो होर ढंग हैं, एडवांस लेवल हैं, उन्हां तक तुसी पहुंच ही नहीं सकते। जे तुहाडे कोल बेसिक जो मैरिट्स होनिया चाहीदियां हैं, गुण होने चाहिए हैं, अगर उही नहीं हैं, जब बेसिक्स ही नहीं हैं, तो अगां दी गल किवें हो सकती है। आओ सुनो, गुरु महाराज जी आखदे हैं, हुण पुछिए सच्चे पातशाह गुण किवें लियाईए, क्योंकि आप जी ते यह आखदे हो कि सुहागणी श्रृंगार बनाया गुण का गलहार। आप जी दी बाणी च ते यह दस्या है कि गुणा दा ही श्रृंगार हुंदा है, गुणा दा ही श्रृंगार हुंदा है। गुरु बाबा जी आखदे हन यह जिहड़ी काया गल चुकी है ना, इस नूं हुण बदल डालो। कहिंदे काया कोमल फुल गुण, एक काया एक बहुत कोमल जही टहनी है, कोमल जही एक प्लांट है, कोमल जही टहनी है, काया कोमल फुल गुण, अते गुणा दे फुल इस काया दे उत्ते नजर आने चाहिए। काया कोमल फुल गुण नानक गुप्पस माल, गुप्पस का मतलब गुंद, प्रो बना माला, काया दी टाणी दे उत्ते ही गुणा दे फुल तेरे लग जान, अते उना गुणा दे फुलां नू चुन चुन के तू माला बना, एनी फुली रौंग करे एना फुलां दे उत्ते ते ओ रीझदा है, प्रसन्न हुंदा है, खुश हुंदा है। ए फुल उसनू अट्रैक्ट कर सकदे हन जिहड़े गुणा दे फुल हन। अवर के चुनिए डाल, कहिंदे होर डालियां तो की फुल तोड़दे फिरदे हो, तुसी बाहरों डालियां नालों टाणियां नालों फुल लिया के तोड़ के गुरु बाबे दे अगे रख दिंदे हो, कहिंदे ओए की करदे पए हो, अवर के चुनिए डाल, डालियां तो क्यों फुल चुनदे फिरदे हो, काया रूपी टाणी दे उत्ते तुहाडे गुणा दा कोई फुल नजर नहीं आंदा, काया रूपी टाणी दे उत्ते कहिंदे गुणा दे फुल होण। साडे शरीर दे उत्ते,
ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ। ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁੱਪ ਸਮਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਪਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਮਾਲਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗੁਣ ਕਾ ਗਲ ਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਮ ਗੁਣੇ ਵਸ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਣ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

सत्य संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। कहते आ श्रृंगार बनाओ पत्नी नू, जदों वो पत्नी बनती है, जदों उसका मिलन हुंदा है, जदों उसकी शादी हुंदी है तो श्रृंगारी जाती है। कहते अकाल पुरख वाहिगुरु भी अपनी दुल्हन नू उदों ही कबूल करता है जदों पूर्ण तौर ते गुणा दे नाल श्रृंगारी पई हो, श्रृंगारी पई हो। पर केड़े केड़े श्रृंगार दे नाल, किस श्रृंगार की गल करते हैं? सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बना, इस श्रृंगार बनाओ। ऐ श्रृंगार है, ऐ गुण है। सत का मतलब है पर उपकार देना, सेवा, किसी के काम आना। क्योंकि जो लफ्ज दो गुरबाणी असूल है कट्ठे आन के सत संतोख, उथे सत का मतलब ट्रुथ नहीं है, सच नहीं है। ए असूल सत संतोख, सत का मतलब है संतोख, और सत नू जो महाराज जी ने जोड़िया उसके विच गहरा राज है। अपने प्रति जो भी पास है उस संतोख, पर देण वेले संतोख नहीं धारण कर लेना, दूसरे नू देण वेले नहीं संतोखी बन जाना। उसले वध तो वध जो हो सके वो करना है, वो देना है। पर असी अपने प्रति संतोखी नहीं हां, दूसरे प्रति असी संतोखी। जिहड़ियां सानू जरूरतां हन उहनां दे विच संतोख नहीं। वी वांट मोर एंड मोर एंड मोर, ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, सारे लोग लै लवां लै लवां, बस मैनू मिल जाए, यही करते फिरदे हां। कहिंदे स्टॉप दैट, संतोख धारण करो। पर जदों परोपकार दा सवाल आंदा है, देण दा सवाल आंदा है, उदों संतोख ना धारण कर लो। सत संतोख दया अते अपने अंदर कंपैशन, दया, किसी का दुख देख के बर्दाश्त ना करना, किसी नू हर्ट ना करना, किसी हर्ट होए नू देख के उसनू बर्दाश्त ना करना। तुहाडे दिल च दया आनी चाहिए, दया एक गुण है, दया एक गुण है। कहिंदे सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावो। हुण अपनी जिंदगी च जिन्हां ने पुछया है, यह सब तो पहला सबक है। कल दे कीर्तन च इस तो अगली गल मन और आत्मा दी कीती जाएगी। दास ने पहले दिन जो शब्द गायन किया सी उस दे विच गुरु बाबा जी ने तिन्ने ही चीजां नू एड्रेस किया सी, बॉडी माइंड एंड सोल। अज असी सिर्फ बॉडी दे ही लैवल ते, उठन बैठन दे लैवल ते, अपने इंट्रैक्शन दे विच, एक दूसरे दे नाल मिलन गिलन दे विच, जो बोलन चलन दे विच, तमाम जो गुण हन जिन्हां दी ग्राउंड तो बिना भक्ति आरंभ नहीं हो सकती, अज असी उन्हां दी गल कर रहे हैं। मिठत नीमी नानका, गुण चंगियाईयां तत मिठत। हुण जे तुहाडे सुभाअ दे विच कौड़ापन है, बिटरनेस है, रूडनेस है, मिठास नहीं है, तो फिर तुहाडे परमात्मा नजदीक नहीं आ सकता, तुसी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये अवगुण है। सो इसनू अज ही त्याग के चले जाओ। और अज सुगंध कसम लाओ महाराज के चरणां च बैठ के कि मैं इस अपने मंदिर दे नाल, इस इंस्ट्रूमेंट दे नाल कदे भी कौड़ा नहीं बोलांगा, मिठत। और जिस दिन कौड़ा बोल पाए उस दिन समझ लो निर्गुण राम गुणे वस होए। कौड़ा बोलदिया सार अवगुण आ गया कि तुसी अफोर्ड करोगे अवगुण, क्योंकि अवगुण ने वाहिगुरु नु दूर कर देना है, वह अवगुणा तो दूर हुंदा है। दूसरी गल आखी है मिठत नीवी, वो है निम्रता, नीवे बनना, नीवे बनना, किसे तो अपने आप नू सुपीरियर ना समझना। ये नहीं समझना कि दूसरे मेरे तो किसे भी तरह मेरे तो कम हैं। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, ये आदतां हैं, ये सुभा हैं, पहला ये तारण करने हैं। अज असी
ਭਗਤੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਨਿਮਰਤਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਚ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਉ ਅਗਲੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਦੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸਭ ਸਲਾਹ ਆਪ ਕੋ ਵੱਡੋ ਵਡੇਰੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹਦੇ ਹਨ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਹੋ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਢਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਕੰਕਰ ਅਦਰਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫਾਰ ਦੈਟ। ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਨ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣੋ। ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ, ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਦੇ ਕੇ ਗਜਾਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਸਾਦਗੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਡੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁੱਚ ਪੰਨੀ, ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਅਹਾਜ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਹਨ। ਸੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਠਾਸ, ਸੁੱਚ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪੇ ਚੱਕੀ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪੇ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਸੀਲ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਰਸੂ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਜਮ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਹੈ,
क्योंकि मैं अभ्यास करना है, इतने बजे सौ जाना है क्योंकि अमृत वेले उठना है, वो डिसिप्लिन है। अननेसेसरी कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अते सिर्फ लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते, लोगों नू अबलाइज करन दे वास्ते रात दे एक एक दो दो बजे तक पार्टियां च बैठे रहे थे, अमृत वेले कदों उठोगे तुसीं? उस दे लिए डिसिप्लिन होना चाहिए है, उस दे वास्ते लोगों की कई दफा अगर नाराजगी सहारनी पवे तो गुरमुख जो है वह उसनू भी कह दिंदा है कि मेरे डिसिप्लिन दे विच फर्क पैंदा है। डिसिप्लिन दे विच रहना, संजम दे विच रहना, सील संजम सुच, कहिंदे ऐ तीन चीजां ते भन्ने ही दित्तियां हन। सील संजम सुच, सुच दा अर्थ हुंदा है बहुत पवित्रताई दे नाल इस मंदिर नू वाहिगुरु दा मंदिर समझ के कि मैं वाहिगुरु नू सर्व कर रहा हां, बहुत ही साफ सुथरे ढंग दे नाल प्रेम नाल सर्व करना है, ना कि जूठे मूठे हत्थां नाल आप ही चक्की जाओ, आप ही खाई जाओ, आप ही पाई जाओ। सुच दा नामो निशान नहीं रहा, असी नाले खाई जाने हां, नाले लिखी जाने हां, नाले खाई जाने हैं, नाले टेलीफोन अटेंड करी जाने हैं, वही जूठे हाथ टेलीफोन लगते हैं, कोई दूसरा आके उसको पकड़ता है। सील संजम सुच पन्नी, कहते पन्न दिती है, ये अवगुण है। खाना खाज अहाज, अते खाना साडा उस दे विच हुण सानू होश ही नहीं रही तो ये बनाया किसने है, किवें बनाया है, साफ सुथरा होके बनाया है या नहीं बनाया। खाज अहाज जो गलत मलत है वो असी खाण लग पे, रेस्टोरेंट्स दे विच असी खाने हैं। तुसी कदे सोचो ते सही, वो लोग जो अंदर रोस्ट हो रहे हैं, वो बड़े बड़े ओवन्स दे आले दुआले खड़े होके कुक कर रहे हैं, वो बहुत मन दी शांति च ते प्रेम दे नाल कुक कर रहे हैं, को भावना दे नाल तुहाडे सामने प्लेट लिया के रखते हैं, पता नहीं कितने जले पुजे हैं अंदरों बेचारे सारे दिन दे थके मंदे, ते उस किस्म की एनर्जी उस फूड दे विच आंदी है जिसने वो तैयार किया है, तो असी बाहर बैठ के उसनू रैलिश करते हैं। किस स्टेट ऑफ माइंड दे नाल उसने बनाया है सानू कोई पता नहीं है, उसके हाथ साफ सन या नहीं सन सानू पता नहीं है, सुचे सन या नहीं सन, किते ऐसा तो नहीं कि साडे ही खाने नू उसने पहला टेस्ट करके देखा होवे कि स्पाइस ठीक है या नहीं है। हाउ डू यू नो, पर साडे च कोई अज परहेज ही नहीं है, जिथे मर्जी बैठ जाओ और खा लो। दास ट्रैवल कर रहा सी लंडन तो मस्कट तक की फ्लाइट दे विच, ओ एयर होस्टेस दो तीन दफा आई पूछन लगिया कि मिस्टर सिंह यू वांट एनीथिंग, मैं कहनो आई हैव माई ओन वाटर एंड समथिंग टू ईट। फाइनली उन्होंने मैंने पूछा कि वट इज द रीजन यू आर नॉट टेकिंग ईवन टी फ्रॉम अस एनीथिंग ईवन वाटर। मैं क्या इसका कारण यह है कि इको ही ट्रॉली दे विचों तुसी मीट भी सर्व करी जा रहे हो, अल्कोहल भी सर्व करी जा रहे हो, बीयर भी सर्व करी जा रहे हो, फिर लोगों के जूठे भांडे चक चक के फिर वापस रखी जा रहे हो। मैं क्या हैव यू वॉश यूर हैंड्स, कहती नो। मैं क्या देन आई कैनॉट टेक फ्रॉम यू, इफ यू वॉन्ट टू गिव मी समथिंग गो एंड वॉश यूर हैंड्स, क्योंकि क्लीन नहीं है। तो कहते हु कैन बॉदर फॉर ऑल दैट, वी कांट बी बॉदर फॉर ऑल दैट। इस करके मैं क्या मैं तो कुछ लैके खांदा नहीं। ए अवगुण है, असा ए तमाम कुछ जो ग्राउंड है इसनू पहला सीखना है, उठना बैठना खाना पीना बोलना चलना ए तमाम पहनना ए सब कुछ सीखना है। और सब तो वड्डे जो गुण हैं वो है निम्रता। वो हो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, महाराज जी कहते इतनी निम्रता तेरे अंदर होवे कि तू सारे दे चरणा की धूड़ बनिया पिया होवे ता जाके साडे पास आई। वो सबना की रेन का तो आओ हमारे पास, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत्। फिक्का बोलन की गुंजाइश ही नहीं छड़ी महाराज ने, नानक फिक्का बोलिया तन मन फिक्का होए, फिको फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का दरगाह सटिए मूह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लहे सजाए। पाणा जुतियां नू आखते हैं, कहते हैं दरगाह उसके जुतियां पैंदियां हैं। नाउ थिंक जदों भी तुसी फिक्का बोले हो तो तुहाडे उत्ते आ कुछ लागू हुंदा है। फिक्का दरगाह सटिए मूह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखिए उसनू मूर्ख आख्या जांदा है। सो किस तरह फिक्का बोल सकते हो,
ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੋ ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਓ ਕਿ ਮੁੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਨ ਕਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਲੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਥ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਨੈਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਟਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਨਾਲ, ਪਰਫਿਊਮਸ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਦਸਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾਓ।

पुरातन राग रहे ऐदावादी ऋषभ संवादी पंचम ने ओडव जाति का राग है भाव एर अंदर पंच सुरां लगदिया ने।

addig ráadásom. अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे है। आई साहब, आई गुरदास जी लिख दे, रानी वाला पलंग खाली, थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी। पर जिस वेले राणे नु राजे ने नहीं तकिया, तब भाई साहब जी लिख रहे राजे दे मन च बड़ी हैरानी। अद्धी रात दा समय, राणी किधर चली? राजा उठिया, महल दे अंदर राणी नू लभण लग गए। सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना आवी, मन विच वरत गई है। तो प्यारी साध संगत, राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउण लग गए, मंदे भी आउण लग। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है, पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना, ये तो मैनू धोखा देंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया, नींद आ गई। दिन चढ़ेगा, जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया, राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दिती, राणीए उठ। राणी उठी, राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल कीता राणी ते, ए राणीए सच दस, तू राती किथे गई सी? अधी रात तू गैर हाजिर सी, किथे गई सी? राणी सोचन लगी, जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां, हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी? आई साहब जी लिखते, साध संगत मिल गाम दे, कराती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी सी, महापुरुषां दी संगत रात नू जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी, चाहे मीं होवे चाहे नेरी, कैसा

आनंद साहब का पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम आनंद साहब का पाठ सारे मिलकर

कृपा मोहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नो मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया दी लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेनू इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो, इहदे वर्गा। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात ओदा नाम है, ए ओनू दिंदा जिहदे ते ओह कृपा कर देवे। इस शब्द विच भी ये मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शिया ओदे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए, ऐसी मंग इस शब्द

सब तन गुर सतगुर गुर सतगुर जित मिल हर पड़दा तू तन तन सुन करे मैं तुझ बिन अवर न होई तुझ आपे सी।

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठा है।

इस अमृत में प्राप्त कौन कर दे हम जिन भिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार जिन्होंने भाई शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरोल अमृत बाणी का रस पीता है ओ खुशकिस्मत गुरु नानक के दर से सदा ही अमृत रस है पर पीले भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे अठे पहर महल में चानन बरन प्रेम दे दीवे फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे बाबा जी बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन दीवा जगाण वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी पहला तो दीवा बनाइए फिर उसनु पकाइए ओले वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा है सरसों कितों उगदी बड़ी मेहनत फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट दी लोड़ ओले वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा ए सोना दीवा जगाई किवें जगेगा प्यार दे नाल दीवा जगे भाई जग गया दीवा फिर लोग आपे कह गए नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई जो मेरे धन गुरु नानक के दरबार चाके जुड़े हो आओ भागा वाले हो अपनी रसना पवित्र करो सेवक दे कन सफले करो प्यार नाल आखो सतना धन्यवाद जो गुरु दे प्यारे जुड़ बैठे हो और गुरु जिसने सानू सब कुछ दिता है साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार ली बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदार तुसी बाहर चले जाते हो ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते ते कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है आखो सी हो अगला भी कोई बापू दूजिया के बापू अपने बच्चों मठियाइया लिया के दें खिलौने लिया के दें तरह तरह की चीजा लिया के दें बेबे साडा भी कोई बापू वीर ने इन्हों छाती ना ला के कहनी है पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है पर वीर हुण ना जाए हुण ना परदेसां नूं जाए तो प्यारी सत्संगत परमकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती फर जाती है पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातब होके कहा सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले रब आप ही पालसी सारिआं नूं जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दिला रहा बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है काम क्रोध मोहंकार की अगली साड़ी है बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है संसार रोगी नाम दारू नाम दा दारू दिता उस दाते नहीं जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो यही दात होती है आए कर प्यार नाल पढ़ो पहले सेहत बोले तो पीछे सारी सही संगत गढ़ के अपनी अपनी हाजरियां लगवा बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वह इतों कुछ नहीं ले जाता जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی درگاہ کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگت پہلے سیٹ بولنے پیچھے ساری سنگت واہ